0: weekend camping na walang Tacoma, siksikan sa campsites. But when you get a Tacoma ngayong Red Tag Days, you can take advantage of its powerful i-Force engine and rugged capability para makahanap ka ng peace and quiet. Take advantage of Red Tag Days on now. Lease a 2026 Tacoma 4x4 Double Cab SR5 from 110 weekly for 60 months at 5.49% APR with $68.99 down. Hybrid available. Visit shoptoyota.ca or your local Toyota dealer today.
1: Whenever you want it, wherever you are, at the palm of your hands. Listen to FM 94.7 anywhere with the Fairchild Radio app. Available now for free on your device's player or app store. Connecting you to the community. Anytime, anywhere.
0: Pag long weekend na walang Toyota Prius plug-in hybrid, ang daming pit stops. But when you get a Prius plug-in hybrid ngayong Red Tag Days, tuloy-tuloy lang up to an estimated combined range na hanggang 962 kilometers. Unplug and unwind. Take advantage of Red Tag Days on now. Get a $5,000 lease incentive plus up to $2,500 federal rebate for eligible customers on select 2026 Prius plug-in hybrid models. Visit shoptoyota.ca or your local Toyota dealer today.
2: The time is 7 p.m. You are listening to Fairchild Radio CHKF FM 94.7, a multicultural radio station in Calgary.
3: ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਤਿੰਦਰ ਪੰਨੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਰੇਡੀਓ ਸੁਰਸੰਗਮ 94.7 FM ਤੇ ਸੁਣੋ ਹਫਤੇ ਦੇ 20 ਘੰਟੇ ਰੇਡੀਓ ਸੁਰਸੰਗਮ radiosursangam.ca ਫੋਨ 403-585-0910 ਰੇਡੀਓ ਸੁਰਸੰਗਮ
4: ਕੈਲਗਰੀਜ਼ ਓਲਡੈਸਟ ਬਿਗੇਸਟ ਐਂਡ ਓਨਲੀ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸੋਬਰੰਗ ਰੇਡੀਓ 94.7 FM
5: ਮੰਡੇ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਥਰਸਡੇ ਫ੍ਰਾਈਡੇ 7 ਟੂ 8 PM ਸੰਡੇਜ਼ 1 ਟੂ 5 PM
4: ਵਿਜ਼ਿਟ sobrang.ca
2: The following program speaks to the East Indian community, uniting the world for your listening pleasure at Fairchild Radio, the multicultural spirit of Calgary, CHKF 94.7 FM.
6: दोपहर के एक बजे पुणे के एरंडवने इलाके में डीपी रोड पर हवा का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन सड़क का तापमान यह 58 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा था। आर्किटेक्चर कॉलेज ऑफ भारतीय कला प्रसारिणी सभा की प्रोफेसर प्रज्ञा पत्की ने अपनी रिसर्च के लिए पुणे की अलग अलग सड़कों का तापमान मापा। इससे एक चीज तो साफ हो गई, वो ये था कि व्यस्त रहने वाली सड़कें ज्यादा गर्म हो रही है। सड़क पर खड़ी गाड़ियां और छाप की कमी भी शहरों में तापमान बढ़ाने का कारण बन रही है। पत्की बताती हैं कि एक तरफ सड़क की सतह का तापमान गर्म होकर 58 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया, वहीं दूसरी तरफ जहां पेड़ हैं वहां तापमान करीब 20 डिग्री सेल्सियस ठंडा था।
7: कंक्रीट सरफेस
8: जहां कंक्रीट की सतह है वहां हम सतह का तापमान मापते हैं तो यह 58 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है, और उसी सड़क पर जिस ओर पेड़ हैं अगर हम वहां तापमान मापते हैं तो वो नीचे गिर जाता है या घटकर करीब 35 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाता है। कड़ी से कड़ी धूप वाली दोपहर में भी एक पेड़ के नीचे तापमान कम ही रहता है।
6: इन तपती हुई सड़कों से सबसे ज्यादा प्रभावित वो लोग हैं जो इन पर काम करते हैं, जैसे फेरी वाले, फुटपाथ पर दुकान लगाने वाले और चाय की टपरी वाले। प्रयास हेल्थ ग्रुप ने ये जानने के लिए एक स्टडी की कि ये हीट उन्हें कैसे प्रभावित करती है।
9: पथारी व्यवसायिक आयदर त्या रस्त्यांवरच बसत

0: फुटपाथ पर दुकान लगाने वाले सड़कों पर बैठते हैं या फिर सड़क के किनारे उनकी दुकानें लगी होती हैं। उनमें से कुछ के अनुभव बेहद मार्मिक थे। एक शख्स ने कहा कि हमारे लिए ये ऐसा है जैसे ऊपर से सूरज तेज गर्मी बरसा रहा है और नीचे की सड़क तेज जल रही है और हमें हीट शॉक लग रहा हो। शाम में ये कंक्रीट की सड़कें गर्मी छोड़ती हैं। इस गर्मी में वो बेचैन हो जाते हैं और उन्हें सांस लेने में भी दिक्कत होती है। उनकी धड़कन तेज होती है, हाथ पैर कांपने लगते हैं। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है इसका असर उनके शरीर पर पड़ता है।
1: उष्णता वाढलेली आहे आणि त्याचा त्यांच्या शरीरावरती परिणाम होतो।
2: सड़कों के अलावा सीमेंट और कांच से ढकी चमकदार इमारतें भी तापमान बढ़ने का बड़ा कारण है। रिसर्च से पता चलता है कि सीमेंट जितने समय में गर्म होती है ठंडी होने में उसे इससे कहीं ज्यादा समय लगता है। लिहाजा सूर्यास्त के बाद भी शहर ठंडा नहीं होता। इसे अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट कहते हैं, जिससे शहरों के अंदर ही हीट के पॉकेट बन जाते हैं।
3: अर्बन हीट आइलैंड म्हणजे काय की शहरातले असे काही
4: अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट का मतलब है शहर के कुछ ऐसे क्षेत्र जहां का तापमान ग्रामीण क्षेत्रों के मुकाबले अधिक होता है। इसके पीछे मुख्य कारण कंक्रीट और डामर की सड़कें हैं। गाड़ियों से निकलने वाला धुआं भी इसका एक अन्य कारण है। कंक्रीट में हीट अब्सॉर्बिंग यानी गर्मी को सोखने की प्रॉपर्टी होती है। बाद में इससे जो हीट निकलती है उसे कंक्रीट से बनी दूसरी चीजें अब्सॉर्ब करती हैं और इस तरह हीट उसी क्षेत्र में घूमती रहती है, लिहाजा उस इलाके का तापमान बढ़ जाता है।
2: भारत में तेज शहरीकरण के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर का भी तेजी से विस्तार हो रहा है। इस तेज रफ्तार डेवलपमेंट के बीच अर्बन हीट आइलैंड चिंता बनकर उभर रहे हैं।

0: समय तुहाडे संग तुहाडा अपना यह रेडियो सुरसंगम।
1: ओहो आज फिर नहीं लोड मिलिया
2: की होया
1: बस पूछना इंश्योरेंस कंफर्मेशन नहीं आई टाइम पे ते हुन फिर एक दिन वेट करनी पैनी है ते बच्चियां नु फिर नहीं मिल होना दो दिन
2: ओहो रह गए ना फिर पीछे मैं सुनया है सोनिक इंश्योरेंस दे मानस पहुजा अते रमन वड़ाच ते उना दी टीम इंश्योरेंस कंफर्मेशन बहुत जल्दी प्रोवाइड करवा दंदी है ते ओ ता पोर्टल भी सेट कर दंदे ने ताकि तुसी आप ही कंफर्मेशन दे सको बशर्ते तुहाडी इंश्योरेंस एक्टिव है तुसी आज ही उना नु फोन करो ते जल्दी जल्दी गल करके कोई हल लभो ताकि अगली बारी तुसी कार टाइम ते आ सको ते बच्चा नाल टाइम भी स्पेंड कर सको फोन नंबर है मानस पहुजा 5878321208 या रमन वड़ैच 7807530001 सोनिक इंश्योरेंस
3: ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ YYC ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੁਣੋ
4: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਟਾਟਾ ਮੈਂ ਫਾਊਂਡਰ ਆ YYC ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀ ਐਂਡ ਮੈਂ ਪੈਰਾਮੈਡਿਕ ਆ ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਐਟ YYC ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ

0: ਨਾਈਨ ਟਰੈਕਟਰ ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਇਨਵਾਈਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹਦੇ ਲਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫੰਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੋਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 8257600983 ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ
1: मर्सिडीज कार खरीदना चाहते हो हुण कैनेडा दे विच तुहाडे सुपने सच होण दा समा आ गया कैनेडा दे विच मर्सिडीज दी सब तो वड्डी डीलरशिप कैलगरी एयरपोर्ट दे नेड़े मर्सिडीज बेंस कंट्री हिल पहुंचो ते सिद्धी गलबात करो गौरव शर्मा दे नाल पंजाबी हिंदी उर्दू या फिर अंग्रेजी दे विच गलबात करो गौरव शर्मा तुहानू देणगे वधिया सलाह ते वधिया डील्स मर्सिडीज बेंस कंट्री हिल्स 70 दे करीब कारां दी डिस्प्ले वाला वड्डा शोरूम सब दा माण सब दी चाहत अपनी सुपनमई कार खरीदन लई गौरव शर्मा नू शोरूम च जाके मिलो या फिर फोन कर लो 4039036757 मर्सिडीज बेंस कंट्री हिल्स नॉर्थ ईस्ट कैलगरी दे कैसल रिज एरिया दे विच है लॉट खरीदन दा शानदार मौका जिथे बनाए जा सकदे ने 3 टाउन हाउस एना ही नहीं एना तिना दे नाल लीगल बेसमेंट सुइट भी बनाई जा सकती ने बिल्डर्स ते इन्वेस्टर्स लई है शानदार मौका फ्यूचर रेंटल इनकम लई है ए एक बहुत वधिया ऑप्शन वधेरे जानकारी लई कॉल कर सकदे हो एमे नू 403-617-2111 ते अमन गिल नू भी कॉल कर सकदे हो 403-479-7007 ते बिल्डिंग परमिट पहला तो ही अप्रूव्ड है
2: कैनेडा विच रहंदिया इंश्योरेंस की बहुत अहमियत है किसी भी तरह की इंश्योरेंस ले पंजाब इंश्योरेंस से रीजनल मैनेजर हरपिंदर सिद्धू नाल आज ही संपर्क करो सुपर वीजा लाइफ इंश्योरेंस मॉर्गेज इंश्योरेंस आरईएसपी दिया वधिया सेवावां लई पिछले लंबे अरसे तो कैलगरी विच जानिया पहचानिया नाम है हरपिंदर सिद्धू ए इंश्योरेंस ले नामवर कंपनियां नाल काम करदे हन होर जानकारी ले पंजाब इंश्योरेंस से हरपिंदर सिद्धू नाल 403-404-3300 ते संपर्क करो
3: नमस्कार सलाम याली मदद सत श्री अकाल वेरी गुड इवनिंग टू कैलगरी आप सबका स्वागत है हमारे प्रोग्राम आपकी आवाज में दोस्तों आप सुन रहे हैं रेडियो सुर संगम ओनली ऑन 94.7 FM पर मैं हूं आपका होस्ट आपका दोस्त अमृत बरार आप सबका अपने इस प्रोग्राम में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब मस्त होंगे व्यस्त होंगे और स्वस्थ होंगे दोस्तों कैलगरी में अगेन मौसम बहुत बढ़िया लेकिन कभी भी आप कैलगरी वेदर को फॉर ग्रांटेड मत लीजिए कभी भी ठंडा गर्म ये दोनों चलता है लेकिन अभी तक जो हमारे वेदर प्रभु कह रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि भैया मौसम अच्छा रहेगा बढ़िया रहेगा 16, 27, 26, 23 लेकिन अगेन रात को थोड़ी ठंड हो जाती है तो प्लीज अपना ध्यान रखें बारिश का मौसम है तो बारिशें जरूर होंगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे क्रॉप्स के लिए और हमारे फार्मर भाइयों के लिए तो प्लीज अपनी गाड़ियों का स्पेशल ध्यान रखें वाइपर चलते हों जो हमेशा कहता हूं और ब्रेकिंग स्पेशली बारिश के टाइम पे जरूर ध्यान से ब्रेक लगाएं क्योंकि आपके आसपास और गाड़ियां भी होती हैं तो प्लीज प्लीज इन चीजों को जरूर ध्यान में रखते हुए आप इस मौसम को एंजॉय करें जैसा शुरू में रादर शुरू में मैं कह सकता हूं स्टार्टिंग ऑफ अप्रैल हमने ये डिस्कस किया था कि जब भी गर्मियां आनी शुरू होती हैं कैलगरी में जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं और जितने भी हमारे लोकल आर्टिस्ट्स हैं वो हमारे लिए बड़े प्यार से बहुत अच्छे प्रोग्राम्स अरेंज करते हैं जिनको हम एंजॉय कर सकें क्योंकि अगेन जब विंटर्स आती हैं तो लोग थोड़े से पीछे हो जाते हैं कि यार चलो इसको कम करते हैं -30 में कौन आएगा प्रोग्राम देखने या जो प्रोग्राम होते भी हैं उनमें शिरकत लोगों की थोड़ी कम होती है लेकिन जैसे ही गर्मियां आती हैं हमारे कैलगरी में एकदम बहार आ जाती है प्रोग्राम्स की और ऐसे ही अमेजिंग प्रोग्राम में से एक प्रोग्राम आने वाला है बहुत जल्द जो कि है मई 31 को अगले ही हफ्ते आज हम उसके बारे में बात करेंगे और उसके लिए बात करने के लिए हमारे साथ तीन गेस्ट इस समय मौजूद हैं हमारे प्रोग्राम में आइए उनका स्वागत करते हैं और जानते हैं कि ये प्रोग्राम क्या है मैं स्वागत करना चाहूंगा करीम सुमार जी का निकिता जी का और राखी बोस जी का जो कि हमारे साथ यहां पर जुड़ी हैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत प्रोग्राम में
4: थैंक यू
3: तो बात शुरू करते हैं करीम सुमार जी

0: लोकल सिंगर हैं, हमारे कैलगरी के जो आप कह सकते हैं एक आवाज है जो आपको जरूर सुननी चाहिए और ये इस प्रोग्राम में आपको सुनने को मिलेगी। हम शुरू में इनसे ये रिक्वेस्ट की गाने के लिए ताकि एक माहौल बन जाए, एक मजा आए प्रोग्राम में, क्योंकि कई बार मोनोटोनस सा हो जाता है बातचीत में कि यार क्या बात कर रहे हैं। साथ में कुछ गीत संगीत चलता रहे तो प्रोग्राम के अंदर मजा रहता है और सुनने में भी अच्छा लगता है। अब मैं आपकी मुलाकात कराऊंगा हमारी थर्ड गेस्ट से, जो कि हमारे को काफी टाइम से जानती हैं लेकिन बीच में गायब हो जाती हैं, फिर एकदम से प्रकट होती हैं कि उनका मैसेज आता है कि हम ये करने वाले हैं। तो स्वामी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें यहाँ पर यू नो टाइम देने के लिए और यहाँ आने के लिए। तो लेटर्स टू आशा जी में आप भी गा रही हैं, राइट
1: जी?
0: तो आप थोड़ा सा ये बताइए कि आशा जी के अलावा और भी किसी सिंगर्स को वहां पर गाने गाए जाएंगे कि सिर्फ आशा जी को ही हम ट्रिब्यूट दे रहे हैं इस प्रोग्राम में?
1: इस प्रोग्राम में आशा जी को ही हम ट्रिब्यूट दे रहे हैं।
0: अच्छा,
1: फोकस सारा उन्हीं पे है। दिस प्रोग्राम इज डेडिकेटेड टू आशा जी ओनली।
0: जी जी।
1: एक दो गाने शायद अदर सिंगर्स के होंगे, बट दैट्स अ सरप्राइज।
0: जी जी।
1: मैं खोलना नहीं चाहती।
0: जी जी जी।
1: 98% गाने आशा जी के,
0: आशा जी के ही होंगे। इसमें मैं देख रहा हूँ कि दो सिंगर्स जो हैं वो वैंकूवर से आ रहे हैं, तब्रेज रोशन जी और श्रेयस कसम जी, जो कि वैंकूवर से शिरकत करेंगे। शायर्स कासम जी, तो उनके बारे में थोड़ा बताएं, क्या कब से वो गा रहे हैं और कैसे आपने उनको रोप इन किया?
2: तब्रेज जी लास्ट 35 इयर्स से वैंकूवर में गा रहे हैं।
0: अच्छा।
2: और अगर वैंकूवर में आप जाएंगे और किसी से भी कहेंगे कि तब्रेज रोशन, तो वो सब जानते हैं तब्रेज रोशन।
0: क्या बात है,
2: 30 साल हो गए उनको।
0: क्या बात है, क्या बात है।
2: सो कैलगरी में भी लोग जानते हैं और उनकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है। सो वो यहाँ पर है उस दिन, तो वी हैव इंट्रोड्यूस्ड हिम टू कैलगरी ऑल्सो फॉर दिस शो। सो जितने भी आशा जी के साथ रफी और किशोर के गाने हैं वो सब हमारी तरफ से तब्रेज इसको निभाएंगे।
0: अच्छा।
2: शायरोस जी इनको मैनेज करती हैं और शायरोस चुलबिली के नाम से बहुत फेमस है। शी हैज लॉट ऑफ नखराज ऑफ रेखा एंड अदर्स।
0: अच्छा।
2: सो शी विल बी मोर डूइंग टुवर्ड्स, जब खयाम के गाने आएंगे उमराज जान के, तो शी विल बी परफॉर्मिंग ऑन दोज टू।
0: क्या बात, क्या बात।
2: दिस इज अ कॉम्बिनेशन शायरोस एंड तब्रेज।
0: क्या बात, क्या बात है। तो बहुत ही डिफरेंट प्रोग्राम आप पेश करने जा रहे हैं, तो इसके अंदर परफॉर्मेंसेस भी हैं कि सिर्फ गाने ही?
2: परफॉर्मेंसेस भी हैं।
0: अच्छा।
2: और मैं एक चीज ऐड कर दूं यहाँ पर,
0: प्लीज।
2: ये फर्स्ट टाइम हो रहा है।
0: क्या?
2: जो ऑडियंस हमारे पास आई है
0: जी,
2: वो टोरंटो से भी आ रही है।
0: क्या बात।
2: $1,000 का टिकट खर्च करके $20 के टिकट लेके लोग आ रहे हैं।
0: क्या बात है।
2: तो टोरंटो से लोग आ रहे हैं हमारे पास, हमारे पास प्रूफ है उसका। क्योंकि हमें प्रूफ मांगा जाएगा नहीं है, ये इतनी बड़ी बात आपने कैसे की। वैंकूवर से लोग आ रहे हैं, अब ये सारे लोग तब्रेज की वजह से आ रहे हैं।
0: जी जी, जी जी।
2: एडमंटन से लोग आ रहे हैं
0: जी,
2: वो कुछ मेरी वजह से आ रहे हैं। सो
0: उसका प्रूफ भी लाइए अभी आप। कौन ड्राइव करके आया है वहां से?
2: मेरी जी को जानते हैं, मेरी थॉमस इज कमिंग, सो शी इज अ बिग नंबर इन एडमंटन। फिर हमारे पास फोर्ट मैक से लोग आ रहे हैं, लैंड्रिज से लोग आ रहे हैं, रह गया था तो हमें लास्टली दो टिकट्स मॉन्ट्रियल से भी बिकी है। सो ये पहली दफा मैं देख रहा हूं कि लोग आशा जी के लिए आ रहे हैं, या तो फिर ये आर्टिस्ट के लिए आ रहे हैं, या तो जो जादू या निकिता ने किया है उसको देखने आ रहे हैं। सो ये फर्स्ट टाइम हो रहा है और बहुत सारे लोग इसमें परफॉर्म करेंगे। हम जैसे प्रोग्राम आगे चलेगा मैं एक एक के बारे में आपको बताते जाऊंगा।
0: प्लीज प्लीज,
2: लव इट
0: प्लीज। देखिए करीम जी, अगर कोई भी आपसे प्रूफ मांगता है तो आई नो आपने बहुत फ्रेंडली वे में कहा है, बट दैट इज समथिंग विच शुड नॉट बी देयर, बिकॉज आपको झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, आपको किसी चीज को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। जिसने प्रोग्राम सुनना है वो कहीं से भी आ सकता है, राइट?
2: यही मैं चाहता हूँ कैलगरी में हो।
0: बिल्कुल। और ये सबके साथ हो, ये नहीं कि आज निकिता है और स्वामी जी हैं, कोई भी हो प्रोग्राम, क्योंकि हमें मेन चीज है कि अपने जो लोकल आर्टिस्ट हैं, जो हमारा यहाँ का यू नो एक ग्रुप बना हुआ है जो कि अपकमिंग सिंगर्स हैं, उनको भी प्रमोट करना चाहिए, उनका नाम भी आगे आना चाहिए, राइट? और आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं इसको आगे लाने के लिए।
2: आपको नहीं पता इसमें से कौन सिंगर ऐसा सिंगर है जो बॉलीवुड प्लेबैक लेवल पे भी हो सकता है?
0: बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल।
2: तो मैं आपको टीम के बारे में अभी रहेंगे। फिर हमारी जो ये सुपर स्टार बैठी है निकिता देसाई
0: जी,
2: नाम लेते हुए मुझे सुर का ध्यान, बहुत जबरदस्त गाती है।

0: मेरी आंखों में आंसू आ चुके हैं इनकी गायकी से. सो इतना रूह को कोई छू ले आपको, ये महसूस करने के लिए आपको लाइव देखना पड़ेगा या यू हैव टू बी प्रेजेंट. आप तो होंगे शो
1: में. बिल्कुल जी बिल्कुल.
0: ओके निकिता, वी आर वेरी प्राउड. ठीक है, निकिता के बाद हमारे पास है राखी जी जो हमारे बचपन की साथी हैं.
1: बिल्कुल
0: ठीक है. So Rocky has been singing for a long time also, and she's also sound engineer, DJ, managing. किसको कहाँ बिठाना है?
1: Total versatility इनके अंदर. अमित
0: भाई, अमित भाई को यहाँ बिठा दीजिए. तो ये सब राखी करती हैं, सब मैनेज करती हैं. फिर राहत अब्दुल्ला जी हैं, शायद इनकी वजह से एडमिंटन आ रहा है हमारे पास. राहत हैंडल्स एडमिंटन.
1: ओके.
0: सो अभी हमारे पास ये शो शायद इसके बाद एडमिंटन जा रहा है.
1: क्या बात.
0: सो राहत जी वहां से है हमारे पास. शी इज अ परफॉर्मर टू. Kiran Sood is from Hindu Society of Calgary and she's bringing the entire musical dancing group.
1: क्या बात.
0: So Junior Asha ji आ रही है हमारे show में.
1: अच्छा, वो क्या है सरप्राइज?
0: शील नाम है उनका.
1: सुरभि शील जी. जी जी जी,
0: उनका टाइटल है. और वो पूरा गेटअप भी आप आशा जी का लेके आ रहे हैं.
1: क्या बात है, क्या बात है.
0: एंड जूनियर आशा उन्हें कहते हैं लोग.
1: क्या बात.
0: सो वी आर वेरी प्राउड. अगर आशा जी का प्रोग्राम हो, वो ना हो, तो फिर आशा जी का फोन आ जाएगा ऊपर से. ये हमें कहना पड़ा है. उसके बाद हमारे पास मुनीरा बांझे जी हैं, बहुत जबरदस्त मार्केटिंग की हमारे लिए. अमृत ब्राट जी जो हमें एयर रेडियो पे लेके आए हैं. गुलनार दलवानी, शी विल बी परफॉर्मिंग एज अ डांसर. अलनूर दाला जी आपके बहुत बड़े फैन हैं, सारे टिकट्स इन्होंने खरीद लिए तकरीबन. शिनाज डायमंड मुर्जी, थैंक यू फॉर द टिकट्स. साक्षी हमारे पास एक गेस्ट सिंगर है, शी इज ऑल्सो फ्रॉम इंडिया. एक और रीजन है जो एक सीक्रेट है, प्रोग्राम में आपको बताया जाएगा कि इनको क्यों सेलेक्ट किया गया है. फिर हम री इंट्रोड्यूस कर रहे हैं सागर आचार्य को.
1: अच्छा,
0: जबरदस्त सिंगर है.
1: ओके.
0: और कैलगरी में 2 साल हो गए, वो बिल्कुल कहीं पे भी नहीं थे, फैमिलीज में स्टक हो गए थे. तो सागर इज कमिंग बैक टू कैलगरी. सागर आप ये सुन रहे हो तो प्लीज, वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू. एंड एक अच्छा सा डुएट निकिता और सागर का हम करेंगे. और ये प्रॉमिस है कि रियलिटी शो आपने जितने देखे हैं, हम उनकी क्वालिटी को मैच और या तो बैटर करेंगे. और निकिता ने मुझे प्रॉमिस किया है. ठीक है. सो मैं 2 मिनट और ले लूं. बस ये लोग हमारे पास टीम के पार्ट हैं. और शुरू तो 2 लोगों से ही हुआ था, लेकिन सब लोगों ने ज्वाइन किया है. और मैं किसी को ना नहीं कर सका, क्योंकि हर एक टैलेंटेड बंदे के अंदर वो रूम है, उसकी टैलेंट छुपा हुआ था. सो मैं नहीं रोक सकता उसको. वो मेरे प्रोग्राम का पार्ट होंगे एंड वो है.
1: नहीं, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगेन इतनी बड़ी टीम को इकट्ठा करना करीम जी कोई छोटी बात नहीं है. उसको साथ लेके चलना, प्लस लोगों को इक्वल रिस्पेक्ट देना. देखिए, आज मैं गाना शुरू करूं, मैं निकिता जी के लेवल पे पहुंचने में मुझे पता नहीं कितना टाइम लग जाए. राइट. तो अगर आप मेरे को भी सेम रिस्पेक्ट दे रहे हैं और निकिते को भी दे रहे हैं, हमारा लेवल बहुत अलग रहेगा. वो सिंगिंग में आ जाएगा, वो रिस्पेक्ट उसमें नहीं आती है. होता है कि आपने सबको प्यार से बुलाया, आपने उतना ही प्यार दिया जितना आप निकिते को दे रहे हैं और जितना आप एक जिनको सागर जी को आप प्री इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. तो वो आपकी अपनी पर्सनैलिटी है, आपका अपना प्यार है जो आप सब में बांट रहे हैं. एंड आई थिंक तभी लोग जुड़ते हैं, तभी लोग आपके साथ होते हैं, जब आप लोगों को प्यार देते हैं. और अगर जितना प्यार आप बांटेंगे, उतना प्यार आपको वापस मिलेगा. तो उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इतने अच्छे टैलेंटेड लोगों को इकट्ठा मंच पे लेके आ रहे हैं और मौका दे रहे हैं कि कैलगरी वासी आके उसको उनको सुने और सराहें. ये बहुत बड़ी बात है. निकिता जी से मैं दोबारा बोलूंगा कुछ गाने के लिए, लेकिन उससे पहले राखी जी की कुछ आवाज सुनी जाए. राखी जी, बहुत टाइम हो गया, आप थोड़ा सा गुनगुनाएं और कोई आपका फेवरेट गाना हो आशा जी का, 2 लाइनें हमें सुनाएं प्लीज.
2: थैंक यू.

0: वर्डिंग्स तो देखें आप इसके, फिर उन्होंने गुनगुनाया। अब आशा जी इससे प्यार करते हैं आरडी बर्मन जी, और अगर वो प्यार से गुनगुनाएंगे तो ये मूवी का गाना बन गया उसके बाद, और इतना सुपरहिट हुआ, इतना सुपरहिट गाना बना कि मुझे लगता है कि बहुत दफा नॉमिनेट हुआ ये गाना फॉर आशा जी इन फिल्म फेयर एंड अदर प्रोग्राम्स। सो वी आर वेरी प्राउड कि आपने ये सोलो डुएट सॉरी अदित किया आपने हमारे साथ, थैंक यू।
1: नहीं, बहुत बढ़िया लिरिक्स हैं, और यहाँ पर मैं निकिता से जानना चाहूंगा, निकिता आप कितने सालों से गा रही हैं? आप आप खुद अभी 15-20 साल की लगती हैं और आप कह रही हैं 33 ईयर से गा रही हैं, क्या बात है, बहुत बढ़िया, मतलब कि पहले से ऊपर से सीखे आ रही थी आप। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं आपसे यहाँ पर एक जानना चाहूंगा रिलेटेड टू सिंगिंग, बट आजकल के जो लेटेस्ट सॉन्ग्स आते हैं, और हम बात करें मुकेश जी की, आशा जी की, लता जी की, जो पुराने सिंगर्स रहे हैं हमारे बॉलीवुड के, 50s से चलते हुए आए, उनको सुना हमने, एक तो आवाज तो है ही है, लेकिन लिरिक्स बहुत बड़ा एक रोल प्ले करते हैं गाने के अंदर। अब आजकल के जो गाने हैं, मैं ये नहीं कहता संगीत बुरा है या बुरे हैं, लेकिन फिर भी उनमें रूह की बात करते हैं ना, जैसे करीम साहब के, रूह को छूने वाली बात नहीं है, ठीक है, आप उसको एंजॉय कर सकते हैं, आप उसको इवनिंग में बैठ के सुन सकते हैं, लेकिन हाँ एज अ म्यूजिक, ठीक है, अभी म्यूजिक चल रहा है पीछे, तो एज अ सिंगर आपको कभी लगता है कि पुराने गाने ज्यादा अच्छे हैं या नए अब जो लेटेस्ट दौर चल रहा है वो बेटर है? जी जी जी जी,
2: और मैं ऐसा समझती हूँ कि अभी पुराने जो गाने थे जो सोलफुल थे, जो लिरिक्स थे, वैसे अभी भी आते हैं बट कम आते हैं,
1: कम आते हैं,
2: तो पुराने गाने रूह को ज्यादा छूते थे, अभी के गाने थोड़े फास्ट हो गए, इवोल्यूशन सब जगह पे है, तो म्यूजिक में भी इवोल्यूशन हो रहा है, तो किसी की चॉइस को ऐसा तो नहीं कह सकते कि बुरा है।
1: देखिए बिल्कुल, एब्सोल्युटली
2: हाँ, मतलब अगर मेरी मैं पर्सनली बात करूँ तो मुझे आई एम फैन ऑफ ओल्ड सॉन्ग्स,
1: ओल्ड सॉन्ग्स राइट,
2: मैं खुद एक इंडियन क्लासिकल स्टूडेंट हूँ, तो ऑब्वियसली जहाँ पे राग होगा, सुर हो गए, ताल हो गए, वो ज्यादा रूह को छुएंगे, मुझे ज्यादा पसंद है ऐसे गाने, बट दैट डजंट मीन कि अभी जो गाने आ रहे हैं वो बुरे हैं, मतलब उनका एक अलग से ऑडियंस है, यू नो पूरा एक अलग से ग्रुप है जो वो गाने एडमायर करते हैं, दैट्स ओके टू।
1: नो एब्सोल्युटली, मेरे कहने का मतलब वही था, लेकिन एज अ सिंगर इवन अगर आप राखी जी आप भी अगर आप इत्तेफाक रखती हो कि जो नए गाने हैं उनका म्यूजिक लेवल बहुत बढ़िया है, उनकी आप क्या कह सकते हैं सॉन्ग साउंड क्वालिटी बेटर है। अब फिल्म धुरंधर ही देखिए, उसके अंदर सारे गाने ऑलमोस्ट पुराने ही थे जो उनको रीमेक्स करके डाला गया, राइट, उसका मजा कुछ और आया, लेकिन अगेन वो बीट्स थी, वो म्यूजिक था जिसने उस फिल्म को और बेटर कर दिया, राइट। लेकिन अगर अब ये गाना जो इन्होंने गाया, जो आपने गाया, अब आप इसको बैठे हो और सुन रहे हो तो आपके दिल को छूता है, राइट, कि यार इस गाने का मतलब कुछ है, ये सिर्फ बीट्स नहीं है। तो एज अ सिंगर मैं बस जानना चाहता था कि जो अब हमारे सिंगर्स यहाँ पे हैं उनको कैसा लगता है, बट थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट। राखी जी आपका क्या मानना है कि आजकल के जो सॉन्ग्स हैं या लिरिक्स हैं वो थोड़े बेहतर किए जा सकते हैं, क्योंकि अगेन लिखने वाले अब वो गुलजार साहब या उन तरह की नहीं है लिखने वाले, अब लिखने वाले थोड़े डिफरेंट हो गए। और करीम साहब मैं आपसे दोबारा आपके पास आता हूँ, राखी जी एक चीज और मैं आपसे मेंशन करना चाहूंगा, रीमिक्सेस का बहुत जमाना है, जो नए सॉन्ग्स लिखने वाले हैं वो मेरे ख्याल से या तो कम होते जा रहे हैं, अब समीर जी चले गए, मतलब कि वो ज्यादा दिखते नहीं है,
0: अभी भी करते हैं,
1: मतलब कि प्राइवेट, मतलब कि नॉट सो मच इज देयर, राइट, अब और गुलजार साहब ने भी बिल्कुल ऑलमोस्ट ही बंद कर दिया है लिखना, तो कहां से आएंगे जो लिखेंगे जो इस तरह के? तो राखी जी आपको क्या लगता है?
3: कुछ कुछ गाने ऐसे हैं जो अभी भी दिल को छूते हैं, जैसे कि आशिकी 2 के जो गाने थे,
1: क्या बात है, बिल्कुल सही कहा आपने,
3: वो बिल्कुल बिल्कुल दिल को छुए,
1: सही कहा आपने।
3: अभी थोड़े दिन पहले एक और मूवी आई थी, मुझे मेरे को थोड़ा नाम का प्रॉब्लम है, नाम याद नहीं आ रहा,
1: no
3: यंग कपल स्टोरी,
1: सियारा, हाँ उसके गाने बहुत अच्छे थे, हाँ हाँ उसके गाने बहुत अच्छे थे,
0: लेकिन देखें दम मारो।

0: अभी बजेगा ना आपके पांव
1: वाले
0: का. मुझे सियारा बहुत पसंद है, मेरी गाड़ी में सीडी सब लगा हुआ है, लेकिन मुझे गाने के वर्डिंग्स भूल गया
2: हूँ. वो बात है,
1: बहुत बढ़िया बात. नहीं नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा है. आप अगर आप अभी बात करते हैं, आशिकी 2 की बात करी, आपको कौन सा गाना पूरा याद होगा? नहीं होगा. लेकिन आशा जी का, लता जी का, मुकेश जी का गाना आपको रटा होगा. ये एक फर्क था जो मुझे एज अ लेमैन लगता है.
2: मुझे लगता है उस टाइम के जो लिरिक्स थे, इट वाज मैचिंग टू पीपल्स लाइफ. इट मेड सेंस.
1: क्या बात है.
2: उस टाइम के जो लाइफस्टाइल थी, उस टाइम के जो भी था, मूवीज भी सारे उसी हिसाब से बनते थे, गाने भी उसी हिसाब से बनते.
1: जी जी जी.
2: तो इसीलिए इट मेड टोटल सेंस.
1: जी.
2: एंड मुझे ऐसा लगता है इसी वजह से वो सारे गाने हमें अभी भी रिलेवेंट लगते हैं, इसीलिए वो सारे गाने अभी भी चलते हैं और अभी भी अच्छे.
1: बिल्कुल आपने सही कहा. सो दोस्तों, आपके लिए हमारी टीम लेके आ रही है लेटर्स टू आशा जी, जो कि एक बहुत धमाकेदार प्रोग्राम होने जा रहा है. May 31st फ्रॉम 4 PM टू 9 PM. आप एड्रेस नोट कर लीजिए, 1740, दैट इज 1740 24th Avenue साउथ ईस्ट. ये टिकटेड प्रोग्राम है दोस्तों. रेगुलर टिकट है $20 की और VIP टिकट है $25 की. हमारे पास 5-7 मिनट बचे हैं और इसमें मैं इंक्लूड करना चाहूंगा, टिकट्स इंक्लूड फूड. मतलब कि कमाल है. आज की डेट में कहीं भी खाना जाएंगे तो 30-40 रुपए से, डॉलर से कम में तो आपको ढंग का खाना मिलता ही नहीं है. यहां पर आपको सिंगिंग का, परफॉर्मेंसेस का भंडार और साथ में फूड, अमेजिंग फूड जो आपको मिलने वाला है, आप दोनों चीजें एंजॉय कर सकते हैं. आपको अगर टिकट चाहिए तो आप ईमेल कर सकते हैं etransfer.anshibasu@yahoo.com. और करीम जी और बताएंगे किस तरह से हम ये टिकट्स ले सकते हैं. प्लीज सर.
0: अमृत जी, थोड़ा सा बैड न्यूज है.
1: अच्छा.
0: टिकट हमारा शो सोल्ड आउट हो चुका है.
1: अरे वाह, ये बैड न्यूज थोड़ी है, ये तो सुपर डुपर न्यूज है.
0: फील हो रहा है उन लोगों के लिए जो आना चाहते हैं और अब नहीं आ सक रहे.
1: अच्छा, घर से कुर्सी लाए अपनी तो.
0: अल्बर्टा हेल्थ है ना, ये अलाउ नहीं करता है कि 300 के ऊपर लोग आए.
1: हम कुर्सी डाल के साइड में बिल्कुल बैठ जाएंगे, छोटा सा
0: शो हो रहा था ना
1: तो अलाउ कर देते.
0: मैं आपको बता दूं, हम दीवार तोड़ देते, ठीक है, लेकिन अब नहीं हो सकता यहाँ पर. सो जो लोग अपसेट हो रहे हैं, जिनको रिफंड्स आ रहे हैं, प्लीज आपसे ये रिक्वेस्ट है कि हम एक और शो जरूर लेके आएंगे अभ्रीत ब्राड के साथ.
1: क्या बात
0: वो
1: है?
0: आपको पहली प्रायोरिटी दी जाएगी.
1: क्या बात है.
0: थैंक यू कैलगरी कि आपने हमें सोल्ड आउट किया, एंड हमारी पूरी टीम के लिए थैंक यू.
1: क्या बात है, क्या बात है दोस्तों. सॉरी, लेकिन जैसे करीम जी ने कहा, लेकिन आप इनसे प्लीज प्लीज आप
0: लाइव फेसबुक पे देखिए
1: और इनसे रब्ता बना के रखें, क्योंकि ये शोज आपके लिए आते रहेंगे. तो जैसी टिकट का आप सुने, फटाफट इस टिकट को ले लें ताकि आपको ऐसी धमाकेदार वॉइसेज जो है वो सुनने को मिले. तो अगेन, लेटर्स टू आशा जी, जो कि होने जा रहा है May 31st को शाम को 4 बजे से लेकर 9 बजे तक, 1740 24 Avenue साउथ ईस्ट. लेकिन कहीं पे भी अगर आपको एडजस्ट कर पाएंगे करीम जी, तो प्लीज आप उनसे जरूर रब्ता कीजिए. कहीं ना कहीं से अपनी क्या पता अपनी सीट देते कि यार आ जाओ, मेरी सीट पे बैठ जाओ.
0: आपको रिश्तेदारी दिखानी होगी निकिता.
1: तो निकिता जी जो है वो इस समय हॉट सीट पे बैठी हुई हैं, और शी इज द वन हमारी राखी जी के साथ, जो और जो बाकी सिंगर्स वहां पहुंचने वाले हैं उनके साथ आपको एक धमाकेदार प्रोग्राम देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा. तो प्लीज प्लीज आप करीम जी से जरूर रब्ता बना के रखें. आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया यहां आने के लिए और इतना कुछ शेयर करने के लिए. करीम जी, बिफोर बी एंड टूडेज प्रोग्राम, क्या कहना चाहेंगे ऑडियंस को, लिसनर्स को?
0: बस थैंक यू कहना चाहूंगा, और जो लोग नहीं आ सके हैं, प्लीज हमें फेसबुक पे लाइव कीजिएगा, एंड हम आपको एक गारंटी देते हैं कि हम जितने रियलिटी शोज आप टीवी पे देखते हैं उसके लेवल की क्वालिटी को हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है. एक और चीज मैं आपको बता दूं, एक हॉट न्यूज है हमारे पास. अली हैदर, पुरानी जीन्स
1: जी,
0: सब जानते हैं उन्हें
1: जी.
0: सो वी आर वेरी प्राउड, फर्स्ट टाइम एवर अली हैदर इज कमिंग टू कैलगरी, और हम ये शो ला रहे हैं 12 जून को
1: जी
0: एस्ट्रोलिया हॉल में
1: जी.
0: टिकट्स एंड डिटेल्स आपको जल्दी से मिल जाएंगी, एंड आई एम टेलिंग यू दिस शो विल बी वन ऑफ द टॉप शोज ऑफ कैलगरी, क्योंकि अली हैदर वो सिंगर हैं जो इंडिया में एट द सेम टाइम पाकिस्तान में भी फेमस हुए थे. सो द होल टीम इज रियली प्राउड टू ब्रिंग अली हैदर, एंड अमृत आपके पास ही आने वाले, हम रेडी.
1: बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल.
0: मीडिया पार्टनर भी शायद आप ही होंगे.
1: थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच
0: अमृत, आप हमारे साथ हमेशा होते हैं. अगर

0: मैं अकेला आपको कहूँ आई लव यू तो इट्स नॉट फेयर.
1: अरे बहुत थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच.
0: हमारी आवाज को जनता तक पहुँचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद.
1: थैंक यू सो मच. दीक्षिता जी आपकी तरफ से क्या एक लाइन सुनाई दीजिए जब इतने प्यार से आप देख रही हैं और बोल रही हैं तो प्लीज प्लीज.

दोस्तों आज का प्रोग्राम हमारे कुछ जो सपोर्ट करते हैं जो एम्पावर करते हैं वो है वाईवाईसी होम केयर्स वीरपाल कौर दर्जी आपकी सेवा में आपके बुजुर्गों में बुजुर्गों को कोई भी अगर हेल्प चाहिए तो प्लीज आप उनसे कांटेक्ट करें उनका फोन नंबर 8257600983। जहां पे बुजुर्गों की बात आती है मैं एक इंसिडेंट आपसे शेयर करना चाहूंगा। आई डोंट नो आपको कैसा लगेगा या कैसा आपको फील होगा लेकिन अभी कुछ दिन पहले मेरे को इत्तेफाक हुआ इंडिया जाने का और जिस फ्लाइट में मैं था उस फ्लाइट में एक बहुत ही बुजुर्ग आंटी जी थे वो बोल भी नहीं पा रहे थे लाइक उनकी स्पीच भी नहीं थी वो चल भी नहीं पा रहे थे और वो कैलगरी से दिल्ली जा रहे थे। अगर कोई भी उनको जानता हो और सुन रहा हो क्योंकि मैं जानता हूं इन अ वे क्योंकि जो उनके जो उनको हेल्प कर रहे थे उन्होंने कहा कि उनकी बेटी आई और उनको छोड़ के चली गई। इतना दिल दुखा कि वो माताजी के पास ना तो कोई पैसा था ना उनके पास खाने को कुछ था। 6-6.5 घंटे का स्टॉप ओवर एम्स्टर्डम में था दोस्तों और उनके बच्चे उनको यहां पर छोड़कर एयरपोर्ट पर और किसी के हवाले कर के जी आप इनका ध्यान रख लेना और चले गए। वो माताजी बोल भी नहीं पा रही थी वो माताजी चल भी नहीं पा रही थी। हॉलैंड एयरपोर्ट पे हमने किस तरह से उनको उठाकर बाकी लोगों की मदद से जो कि व्हीलचेयर वाले थे बट एक व्हीलचेयर वाला होता है ना हम वहां पर 2-3 व्हीलचेयर वाले नहीं होते हैं जो कि बुजुर्गों को उठा के बिठाएंगे व्हीलचेयर पर और वो व्हीलचेयर उन लोगों के लिए होती है जो चल नहीं पाते हैं थोड़ा सा एटलीस्ट उठ के तो बैठ जाते हैं व्हीलचेयर पर। वो माताजी तो बेचारी उठ भी नहीं पा रही थी। हमने उठाकर उनको व्हीलचेयर पर बिठाया गेट तक लेके गए उनके पास खाने को भी कुछ नहीं था तो जो हमारे पास था खाने के लिए वो उनको दिया। किस तरह से वो इंडिया पहुंची हैं मैं जानता हूं। अनबिलीवेबल था दुख हो रहा था कि किस तरह से हम अपने मां बाप को ट्रीट करते हैं। उनके पास कैनेडियन पासपोर्ट है उनके पास पासपोर्ट कैनेडियन था। मुझे ये अभी तक समझ में नहीं आया कि उनको वापस क्यों भेजा जा रहा है क्या मजबूरी है। अगर आप उनको भेज भी रहे हो एटलीस्ट कोई चला तो जाओ साथ में। जो इतनी बुजुर्ग माता जी को आपने सिर्फ छोड़ दिया एयरपोर्ट पे कि जाओ जी अपने आप चले जाओ कोई ना कोई आपको इंडिया एयरपोर्ट पे लेने आ जाएगा। ये कहां की किस तरह के लोग हैं आप किस तरह के बच्चे हैं जो इस तरह से कर सकते हैं। व्हीलचेयर की जो एक सहूलियत है एयरलाइन जरूर देती है लेकिन उसकी भी लिमिटेशंस हैं उसका भी एक वे ऑफ यूज है। वाकई दोस्तों इतना दिल दुखा उन माता जी को देखकर कि कौन अपने पेरेंट्स के साथ ऐसे कर सकता है। क्या दिल होगा उन बच्चों का जो उनको ऐसे ही छोड़ के चले गए एयरपोर्ट के आप चले जाओ ना ही उनको कुछ खाने को दिया ना ही उनके पास पैसे उनको वॉशरूम जाना था। किस हिम्मत से वो बेचारी व्हीलचेयर लेडी उनको लेके गई है वहां पर और उन्होंने 8 घंटे यहां से कैलगरी से हॉलैंड तक एम्स्टर्डम तक वहां 6-6.5 घंटे का स्टॉप ओवर और फिर 8-8.5 घंटे की फ्लाइट। ऊपर तो सब देख रहे हैं आपने भी जो आप अपने मां बाप के साथ ऐसा कर रहे हैं एक दिन आप भी उस उम्र में आओगे और फिर आपको याद आएगा अगर आपके साथ ऐसा होगा कि हमने अपने मां बाप को कैसे ट्रीट किया था। मत करें प्लीज अगर कोई बैठ के अपने मां बाप की जो यहां से पैसे मिलते हैं वो खाना चाहता है एटलीस्ट इज्जत तो दें उन्हें। उनको जो भी पैसे गवर्नमेंट यहां पे दे रही है ओल्ड एज पेंशन या उनकी कोई भी पेंशन एटलीस्ट उनको इतना

0: मान दें कि वो अपना बुढ़ापा जो है वो अच्छी तरह निकाल सकें। किस तरह का हार्ट है, किस तरह का दिल है ऐसे बच्चों का जो अपने बुजुर्ग, इतने बुजुर्ग मां को छोड़कर चले गए एयरपोर्ट के ऊपर। बहुत हिम्मत चाहिए, बहुत बड़ा एक हार्टलेस बंदा चाहिए। आपकी जो मर्जी सिचुएशन हो, मैं ये नहीं कहता आपकी सिचुएशन बहुत अच्छी होगी, अगर आप सुन रहे हैं, अगर आप वही हैं जो आप जिनको मैं बोलना चाह रहा हूं, तो अगर कोई भी सिचुएशन हो सकती है आपके घर की, लेकिन इस तरह से दोस्तों, ये मैं एक एक्सपीरियंस हुआ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। मेरी आपसे यही गुजारिश है, प्लीज प्लीज प्लीज अपने पेरेंट्स को इज्जत दें, उनका ध्यान रखें। कल को आपने भी उस एज में आना है, ऐसा ना हो कि कभी आपको रिग्रेट हो कि मैंने क्या कर दिया। माँ बाप ने जो आपके लिए किया है बहुत कम लोग कर पाते हैं। मैंने कहीं सुना था कि दुनिया में सिर्फ आपके माँ बाप ही होते हैं जो चाहते हैं कि आप उनसे, जो उन्होंने किया है उससे बढ़ चढ़ कर करें, जो आपसे जेलस नहीं करेंगे कभी। तो प्लीज प्लीज ऐसा ना करें कि, और मैं जितने भी लोग वहां थे वो बच्चों को, उनके बच्चों को बददुआई दे रहे थे, आपके लिए कोई अच्छे शब्द नहीं निकल रहे थे, चाहे वो व्हीलचेयर वाले थे, चाहे वो एयरलाइन स्टाफ था, चाहे वो वहां के लोग थे जो आसपास उस माता को देख रहे थे कि कैसे कर सकता है कोई ऐसे। तो कितनी बदवाएं आपको लगेंगी ये आप सोच भी नहीं सकते। चलिए एक छोटा सा गाना सुनते हैं और गाने के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ मैसेजेस हमारे स्पॉन्सर्स की तरफ से। अगेन आज का प्रोग्राम एम्पावर करते हैं YYC होम केयर, उनका फोन नंबर है 8257600983। मिलते हैं थोड़े से मैसेज के बाद।
1: पूरा साल हो गया गाना सुनती नूं, बस कैलगरी च कार लैण दी फीलिंग आई लई जायो। वीरे दी फैमिली ने भी टोरंटो तो कैलगरी मूव होण दा मन बना लिया है। उना दे आउण तो पहला मेनू कार चाहिदा है।
2: मेरी कल ही गल होई है रियल्टर जग्गी ते लोहरा नाल, जिन्ना दी सलाह नाल हुण कार एक नहीं दो लवांगे, पहला अपने लई ते दूजा तेरे वीरे लई। मैं सुनया जग्गी ते लो पूरे प्रोफेशनल तरीके नाल समझांदे है।
1: जी हां, मैक्सवेल सेंट्रल रियलिटी नाल काम कर दे जग्गी ढिल्लों नाल एक बार जरूर गलबात करो। जग्गी ढिल्लों दा फोन नंबर है 403-616-2445 403-616-2445। फ्लाइट बहुत लेट हो गई, खान ले बर्गर ले लिए।
2: ना जी, अप्पा ते गर्मा गर्म रोटी खावांगे।
1: माड़े नखरे ना करो, मेथो रात दे 3 बजे रोटियां नहीं पकदियां।
2: ओहो, तुहानू नहीं कष्ट देना, अप्पा चलना है समोसा हाउस इंडियन कुजीन एंड स्वीट्स, जो 24 घंटे खुले हुंदे ने।
1: समोसा हाउस इंडियन कुजीन, ब्रेकफास्ट विच गर्मा गर्म परौठे, लंच एंड डिनर विच पूरियां, छोले भटूरे, फिश टिक्का, चाइनीज इंडियन फूड, हर प्रकार दी मिठाइयां अते केटरिंग भी करदे ने। इंडियन कॉफी अते कुल्लड़ स्पेशल चावी इन्हां कोलों मिलदी है। हर प्रकार दे खाने वाली शानदार रेस्टोरेंट समोसा हाउस इंडियन कुजीन एंड स्वीट्स, ओपन 24 आवर्स, यूनिट 2154-43-10104 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। कॉल 403-400-CART-CART-CART 403-461-6161।
3: जिंदरा मैडम, आ मेरा भतीजा, आ मेरी भैन दी कुड़ी, ते आ मेरी भुआ दी ननान दी कुड़ी है।
4: ओ तू सारा टब्बर कट्ठा करी फिरदा?
5: ओ पाजी, ये असी नहीं, JFS इमिग्रेशन वालिया ने कट्ठा करके दिता है। JFS इमिग्रेशन फॉर स्टडी परमिट, वर्क परमिट, स्पॉन्सरशिप, LMIA, परमानेंट रेजिडेंसी या रिफ्यूजी एंड अपील्स। कॉल 403-436-6000 और 403-406-2004।
6: ओहो, आज फिर नहीं लोड मिलिया।
7: की होया?
6: बस पूछना, इंश्योरेंस कंफर्मेशन नहीं आई टाइम पे, ते हुन फिर एक दिन वेट करनी पैनी है, ते बच्चियां नु फिर नहीं मिल होना 2 दिन।
7: ओहो, रह गए ना फिर पीछे। मैं सुनया है सोनिक इंश्योरेंस दे मानस पहुजा अते रमन वड़ैच ते उना दी टीम इंश्योरेंस कंफर्मेशन बहुत जल्दी प्रोवाइड करवा दिंदी है, ते ओ ता पोर्टल भी सेट कर दिंदे ने ताकि तुसी आप ही कंफर्मेशन दे सको, बशर्ते तुहाडी इंश्योरेंस एक्टिव है। तुसी आज ही उना नु फोन करो ते जल्दी तो जल्दी गल करके कोई हल लभो, ताकि अगली बारी तुसी कार टाइम ते आ सको ते बच्चा नाल टाइम भी स्पेंड कर सको। फोन नंबर है मानस पहुजा

0: 587-832-1208 या रमन वड़ैच 780-753-0001 सोनिक इंश्योरेंस।
1: मर्सिडीज कार खरीदना चाहते हो हुण कैनेडा दे विच तुहाडे सुपने सच होण दा समा आ गया। कैनेडा दे विच मर्सिडीज दी सब तो वड्डी डीलरशिप कैलगरी एयरपोर्ट दे नेड़े। मर्सिडीज बेंस कंट्री हिल पहुंचो ते सिद्धी गलबात करो गौरव शर्मा दे नाल। पंजाबी, हिंदी, उर्दू जां फिर अंग्रेजी दे विच गलबात करो, गौरव शर्मा तुहानू देणगे वधिया सलाह ते वधिया डील्स। मर्सिडीज बेंस कंट्री हिल्स 70 दे करीब कारां दी डिस्प्ले वाला फटा शोरूम। सब दा माण, सब दी चाहत, अपनी सुपनमई कार खरीदने लई गौरव शर्मा नू शोरूम च जाके मिलो जां फिर फोन कर लो 403-903-6757। मर्सिडीज बेंस कंट्री हिल्स।

0: हर समय तुहाडे संग तुहाडा अपना यह है रेडियो सुरसंगम।
1: दोस्तों आप सुन रहे रेडियो सुरसंगम ओनली ऑन 94.7 एफएम पर। मैं हूं आपका होस्ट आपका दोस्त अमृत बरार। आशा करता हूं कि आपको आज प्रोग्राम पसंद आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा जो इन्फॉर्मेशन आपको दी गई। अगेन हमें कहीं ना कहीं अपनी सोसाइटी में ये सोचना पड़ेगा, अपने आसपास ये देखना पड़ेगा कि किस तरह से जो दुनिया है वो चेंज होती जा रही है और किस तरह से जो लोग हैं वो एक डिफरेंट स्फीयर में चले गए हैं। सब अपना अपना सोचते हैं कि मेरा जो है सब कुछ ठीक रहे, दूसरा के ऊपर क्या गुजरेगी, चाहे वो अपने पेरेंट्स ही क्यों ना हो, चाहे वो अपने बच्चे ही क्यों ना हो। लेकिन बहुत लोग ऐसा सोचना लग गए हैं कि इट्स मी और नोबडी एल्स। तो बहुत दुख होता है कई बार कि हम लोगों का जो संस्कार है, हम लोगों की जो तरबियत है वो ऐसी नहीं है कि जहां पे हम लोग अपने पेरेंट्स को ऐसे भूल जाएं या उनको मिसयूज करें। बहुत सारे लोग सिर्फ यहां पर अपने पेरेंट्स को बुलाते हैं ताकि वो बेबी सिटिंग कर सकें। बहुत ऐसे पेरेंट्स हमें मिलते हैं या बुजुर्ग ऐसे मिलते हैं जो जिनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। बट क्या हम लोग सही कर रहे हैं, क्या हम लोग सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये आपको सोचना है। और मैं आपसे ये गुजारिश कर सकता हूं कि प्लीज ऐसा ना करें, अपने बुजुर्गों के साथ ऐसा ना करें। अपने बुजुर्गों को संभाल के रखें, अपने बुजुर्गों का ख्याल रखें, अपने बुजुर्गों को वो इज्जत और मान दें, क्योंकि आज जहां पे भी हम हैं उनके प्यार उनके सैक्रिफाइस की तरफ वजह से ही हैं कि इतना हम कुछ कर पाए और यहां पर पहुंच सके। तो प्लीज प्लीज प्लीज मेरी आपसे यही गुजारिश है। तो आपसे इजाजत लेने का टाइम हो गया, आपसे मुलाकात होगी अगले वीक। तब तक अपना ध्यान रखें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और स्वस्थ रहें। टेक केयर एंड गुड नाइट।

0: हेलो जी, सुरसंगम रेडियो।
1: हेलो जी।
0: हाँ जी, सत श्री अकाल जी।
1: हाँ जी, सत श्री अकाल कुलदीप सिंह जी।
0: सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल।
1: हाँ जी, मैं भी यही दसना सी जे पग आले जेड़े सरदार से ओ सिगे गुरबख्श सिंह मल्ली टोरंटो, ते जेड़े सिगे हरबतारिया वैनकूवर ओ तो साडे नेड़े मांगता दे सिगे पग तो बगैर।
0: ठीक है जी, तुहाडे फोन दे चार डिजिट लिखाओ।
1: हाँ जी, 6559।
0: ठीक है जी, कर लिया जी।
1: हाँ जी,
0: ठीक है जी।
1: ते अपने गुरबख्श सिंह मल्ली हुणी तां सिगे सरदार, पूरा ना हुण होर भी कई बाद होए आ, पर हुण ठीक है। थैंक यू जी।
0: थैंक यू जी, थैंक यू जी। असी सवाल यह पूछा होया कि कैनेडा दे विच मैंबर पार्लीमेंट जिन्ने हुए ने सिख भाईचारे दे, उन्हां विचों दस्तारधारी मैंबर पार्लीमेंट कौन हुए ने पहले, ते बिना दस्तार तो मैंबर पार्लीमेंट कौन हुए ने। 403-902-1323 403-902-1323 कॉल कर लो, 403-902-1323 जां इसे नंबर ते वट्सएप ते मैसेज भेज के अपना जवाब सानू लिखा दिओ जी। गल कर रहे सी इबोला वायरस की। वर्ल्ड हैल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने इस रेयर स्ट्रेन का जिहड़ा है मई 2017 नूं पब्लिक हैल्थ एमरजेंसी ऐलान के इहदा कहा सी कि इह इसका फैलाव हो रहा। सो इस वेले कनेडा ने जिहड़ा स्टैप लिया है जी, वह जिवें अमेरिका ते मैक्सीको ने लए हुए ने, उन्हां नाल थोड़ा जिहा सॉफ्ट मैं स्टैप कह सकता है, पर कोई स्थिति इहो जी है जे विगाड़ वाली भी नहीं जाप रही। ते प्रोग्राम दे विच असी हुण गल जरा बखरेवे दे भी कर लईए। विचार आपो अपने ने जी, विचारां दी आजादी है इस मुल्क दे विच। मैं इस नूं थोड़ा जा होर भी तरीके नाल जोड़ के थोड़ा जा देखना चाहुंदा। असी अल्बर्टा सैपरेशन की गल करदे आं, इस तों पहलां क्यूबिक दे विच रेफरेंडम हो चुका है, ते बहुत थोड़े फर्क नाल रेफरेंडम रह गया सी, ते हार गया सी कि कनेडा नालों वख नहीं होना, वाले की गिणती थोड़ी जी वध सी। इधर अल्बर्टा विच सरकार हुण यह पुछ रही है कि तुसी कनेडा नाल ही रहना चाहते हो, जां तुसी चाहते हो कि रेफरेंडम करवाउण लई सरकार कोई कदम चुके, तो उहदे लई कानूनी चाराजोई जिहड़ी आ करे। यह हुण सवाल पुछा जाएगा अक्तूबर च। होर भी सवाल हैगे ने, उन्हां ते भी असीं आप जी नूं जानकारी देंदे रहांगे, लेकिन इस वेले कनेडा दे प्राइम मिनिस्टर मार्क कारनी हुरा ने अल्बर्टा दे रेफरेंडम बारे जो कल कहा सी, उस नूं होर अगे उन्होंने बताते हुए डेंजरस बलफ ते उन्होंने कहा सी कि खतरनाक रुझान कह लो जां इक जो भी कहना हो तुसीं कह लो। उन्होंने इसकी तुलना ब्रैक्सिट दे नाल कीती कि यूके दे विच यूरोपियन यूनियन नालों तोड़ पछोड़ा करन दा रेफरेंडम करवाया गया, जो कि लोगों ने कहा कि असी नहीं यूरोपियन यूनियन दे विच रहना, इहदे नाल यूके दे विच इनस्टेबिलिटी होई पैदा हुई। सो प्राइम मिनिस्टर मार्क कारनी कहिंदे ने कि अल्बर्टा दे विच जिहड़ा रेफरेंडम सवाल है, जिथे इस दे नाल प्रोविंस दी सैपरेशन ते जिहड़ा रस्ता खुल सकदा, ते डेनियल स्मिथ होरा ने जो ये कदम चुकिया इस बारे वह कहिंदे ने कि उन्होंने अपनी सरकार दे कानूनी सलाहकारां नाल गलबात कीती है, ते नाल जिहड़ा सैपरेशन रोल है जी, सैपरेशन रेफरेंडम है, इस दे विच हाउस ऑफ कॉमन्स दा पार्लीमेंट दा की रोल होना चाहिए, उस ते उन्होंने चर्चा कीती है। ते कहिंदे जो मैनू एक्सपर्ट्स दी माहिरां दी राय जिहड़ी मैनू मिली है वो ये है कि कलैरिटी एक्ट जिहड़ा 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕਲੀਅਰ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੀ ਵਿਲਿੰਗਨੈਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਫੈਡਰਲ ਕਲੈਰਿਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਕਾਰਨੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਐਕਸਪਰਟਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜੋ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਸਮਿਥ

0: समय तुहाडे संग तुहाडा अपना यह रेडियो सुरसंगम।
1: आज फिर नहीं लोड मिलिया।
2: की होया?
1: बस पूछना इंश्योरेंस कंफर्मेशन नहीं आई टाइम ते, ते हुन फिर एक दिन वेट करनी पैनी है ते बच्चियां नू फिर नहीं मिल होना दो दिन।
2: ओहो रह गए ना फिर पिछे। मैं सुनया है सोनिक इंश्योरेंस दे मानस पहुजा अते रमन वड़ैच ते उना दी टीम इंश्योरेंस कंफर्मेशन बहुत जल्दी प्रोवाइड करवा दिंदी है ते ओ ता पोर्टल भी सेट कर दिंदे ने ताकि तुसी आप ही कंफर्मेशन दे सको, पर शर्ते तुहाडी इंश्योरेंस एक्टिव है। तुसी आज ही उना नू फोन करो ते जल्दी तो जल्दी गल करके कोई हल लभो ताकि अगली बारी तुसी कार टाइम ते आ सको ते बच्चा नाल टाइम भी स्पेंड कर सको। फोन नंबर है मानस पहुजा 5878321208 या रमन वड़ैच 7807530001। सोनिक इंश्योरेंस।
3: की तुहाडे परिवार विच किसे नू होम केयर दी जरूरत है? अपने ही घर अंदर अपनी बोली विच होम केयर प्राप्त करन लई YYC होम केयर वालियां दा अगला संदेश सुनो।
4: सत श्री अकाल जी, मेरा नाम वीरपाल कौर टाटा, मैं फाउंडर हां YYC होम केयर सर्विसेज दी एंड मैं पैरामेडिक हां बाय प्रोफेशन। एट YYC होम केयर सर्विसेज असी घरां दे विच होम केयर प्रोवाइड करदे हां जिदे विच असी सरकार नू सिद्धा बिल करदे हां अंडर क्लाइंट डायरेक्टर होम केयर इनवाइसी प्रोग्राम। इहदे लई गवर्नमेंट फंडिंग हैगी आ। उहदे लई तुहानू कोई भी क्वेश्चंस होण तुसी सानू फोन कर सकदे हो 8257600983 ते। थैंक यू।
5: मर्सिडीज कार खरीदना चाहते हो? हुण कैनेडा दे विच तुहाडे सुपने सच होण दा समा आ गया। कैनेडा दे विच मर्सिडीज दी सब तो वड्डी डीलरशिप कैलगरी एयरपोर्ट दे नेड़े मर्सिडीज बेंस कंट्री हिल पहुंचो ते सिद्धी गलबात करो गौरव शर्मा दे नाल। पंजाबी, हिंदी, उर्दू जां फिर अंग्रेजी दे विच गलबात करो, गौरव शर्मा तुहानू देणगे वधिया सलाह ते वधिया डील्स। मर्सिडीज बेंस कंट्री हिल्स 70 दे करीब कारां दी डिस्प्ले वाला फटा शोरूम। सब दा माण, सब दी चाहत, अपनी सुपनमई कार खरीदन लई गौरव शर्मा नू शोरूम च जाके मिलो जां फिर फोन कर लो 4039036757। मर्सिडीज बेंस कंट्री हिल्स। नॉर्थ ईस्ट कैलगरी दे कैसल रिज एरिया दे विच है लॉट खरीदन दा शानदार मौका जिथे बनाए जा सकदे ने 3 टाउन हाउस। एना ही नहीं, एना तिना दे नाल लीगल बेसमेंट सुइट भी बनाईया जा सकदियां ने। बिल्डर्स ते इन्वेस्टर्स लई है शानदार मौका। फ्यूचर रेंटल इनकम लई है ए एक बहुत वधिया ऑप्शन। वधेरे जानकारी लई कॉल कर सकदे हो एमे नू 403-617-2111 ते, ते अमन गिल नू भी कॉल कर सकदे हो 403-479-7007 ते। बिल्डिंग परमिट पहला तो

0: तो ही अप्रूव्ड है।
1: कनाडा विच रहंदियां इंश्योरेंस दी बहुत अहमियत है। किसी भी तरह दी इंश्योरेंस ले पंजाब इंश्योरेंस दे रीजनल मैनेजर हरपिंदर सिद्धू नाल आज ही संपर्क करो। सुपर वीजा, लाइफ इंश्योरेंस, मॉर्गेज इंश्योरेंस, आरईएसपी दियां वधिया सेवावां लई पिछले लंबे अरसे तो कैलगरी विच जानिया पहचानिया नाम है हरपिंदर सिद्धू। ए इंश्योरेंस ले नामवर कंपनियां नाल काम करदे हन। होर जानकारी ले पंजाब इंश्योरेंस दे हरपिंदर सिद्धू नाल 403-404-3500 ते संपर्क करो।
2: सोने घर दी निशानी हुंदी है शानदार फ्लोरिंग, जिथे कदम रखदिया ही तुहाडे मेहमान फ्लोरिंग कंपनी दा पता पुछन लग जान। ते ओ पता है कैलगरी कारपेट एम्पायर, जिथे तुसी ले सकदे हो अपनी पसंदी फ्लोरिंग दा समान। फ्लोरिंग घर दा होवे या होवे कमर्शियल, नवा लवाना होवे या होवे रेनोवेशन दा प्लान, कारपेट, हार्डवुड, लेमिनेट, टाइल ते होर शानदार फ्लोरिंग दे डिजाइनर नाल भरिया है इन्हां दा शोरूम। अज ही इन्हां दे शोरूम ते पुछो। 2935 19th Street, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी, कैलगरी कारपेट एम्पायर। फोन नंबर 403-510-1515, 2935 19th Street, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी।
3: हाई क्वालिटी वालियां फोटो चाहिदियां ने तां फिर पिक्सल फोटो स्टूडियो ते भरोसा कर लो। किसी भी उम्र दियां दो पासपोर्ट फोटो सिर्फ $7 विच तुहाडे कारोबार जां सोशल मीडिया प्रोफाइल लई प्रोफेशनल हेडशॉट, सुंदर फैमिली फोटो जो सदा लई यादगार बन जावे। साडे तजुर्बेकार फोटोग्राफर लेटेस्ट इक्विपमेंट वरतदे हन तां जो तुहाडियां फोटोआं बिल्कुल परफेक्ट आउण। ए सब कुछ बिल्कुल वाजिब प्राइस ते। पासपोर्ट तो लैके हेडशॉट अते परिवार पोर्ट्रेट तक असी सब कुछ करते हाँ। पिक्सल फोटो स्टूडियो ते भरोसा करो। तुहाडी फोटोग्राफी दी हर लोड लई कॉल करो 403-947-0060, 403-947-0060 जां आओ यूनिट 530-669 सवाना बुलेवर्ड, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी। पिक्सल फोटो स्टूडियो जिंदगी दे पलां नूं कैद करदे होए इक फोटो इक वार।
4: ग्रोसरी खरीदने लई हमेशा याद रखो कैलगरी दा मशहूर सांझा पंजाब ग्रोसरी स्टोर।
5: ताजियां सब्जियां, फल फ्रूट, दालां, मसाले ते बर्तनां तो इलावा घरां दी वरतों दा हर समान मिलेगा। कीमतां कट ते क्वालिटी A1।
4: जानिया पछानिया नाम है सांझा पंजाब ग्रोसरी स्टोर।
5: तुहाडी ग्रोसरी दियां लोड़ां पूरियां करन लई सांझा पंजाब दियां कैलगरी दे विच हन 6 लोकेशनां। हफ्ते दे 7 दिन सवेरे 9 बजे तो लैके शाम 9 बजे तक।
4: सांझा पंजाब ग्रोसरी स्टोर, पहली लोकेशन 331-3690 वेस्टमिंस ड्राइव,
5: दूजी लोकेशन 117-7770 एवेन्यू,
4: तीजी लोकेशन 570-6520 फाल्कन रिज बुलेवार्ड,
5: चौथी लोकेशन 606 सिटी स्केप स्क्वायर,
4: पांचवी लोकेशन 3150-235 रेड एम्बर्स वे,
5: छेवीं लोकेशन 445 कैरिंगटन बुलेवार्ड नॉर्थ वेस्ट, कैलगरी।
4: सांझा पंजाब ग्रोसरी स्टोर दियां 6 लोकेशनां दा सांझा फोन नंबर
5: 403-835-2222।
6: अपने घर दा दूजा नां आ सुकून ते कनाडा च घर खरीदना एक वड्डी चुनौती।
4: घर खरीदण तों पहलां इत्मीनान नाल किसे प्रोफेशनल दी सलाह जरूर लाओ।
6: वधिया घर खरीदना, पैसे बचाउणे ने, सिरदर्दी तों वी बचणा, ते याद कर लो एक नाम मनदीप सिंह गिल।
4: सिर्फ घर खरीदण लई ही नहीं बल्कि वेचणा भी होवे तां बिल्कुल सही सलाह देणगे मनदीप सिंह गिल।
6: घर खरीदण ते वेचण लई मैक्सवेल सेंट्रल दे नाल काम करदे मनदीप सिंह गिल देणगे वधिया सलाह ते प्रोफेशनल सर्विस।
4: रियल्टर मनदीप सिंह गिल दा नंबर नोट करो 403-617-1868।
6: जेकर कर रहे हो घर खरीदन ते वेचन दी प्लानिंग, मनदीप सिंह गिल नू कॉल कर लो जां विजिट करो उना दी वेबसाइट mandeep.realtor।
4: मैक्सवेल सेंट्रल दे रियल्टर मनदीप सिंह गिल 403-617-1868।
7: रेडियो सुर संगम 94.7 FM सुन रहे सारे श्रोतियां दा एक बार फिर स्वागत है जी। 6 बजे तक हाजिर हाँ जी। आप चलिए प्रोग्राम लैके 5:10 हो रहे हैं। इस प्रोग्राम के स्पॉन्सर हैं जी सोनिक इंश्योरेंस के। मानस पहुजा हो रही ट्रकों की सस्ती इंश्योरेंस लैण लई तुसी मानस होर नाल संपर्क कर सकते हो। फोन नंबर 587-832-1208, 587-832-1208, सोनिक इंश्योरेंस से मानस पहुजा। YYC होम केयर तो वीरपाल कौर उन्हां दी कंपनी जिहड़ी है घर विच बजुर्गां दी सांभ संभाल लई सेवावां दिंदी है ते बिल सरकार नूं भेजदी है। फोन 825-760-0983, 825-760-0983।